0: Make your media plan smarter with India Today Live TV on your connected devices. Amplify your brand with 100 million smart internet viewers. To advertise, mail us at sales@aajtak.com.
1: Oh, sorry.
2: अब ना त्योहार पर सोने के हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन। अब ना त्योहार पर हार का टेंशन, न शादी में कंगन का मेंशन। पत्नियां ना जाने क्यों हो गई उदास, मोदी जी के मंत्र से पतियों ने ली चैन की सांस।
3: इस अनाउंसमेंट ने जीता हमारा दिल, बीवियों का सोना खरीदना हो गया है मुश्किल, हो गया है मुश्किल।
2: थैंक यू मोदी जी।
4: सुनिए सुनिए सुनिए सुनिए।

0: to 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
1: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: TuneIn has got your favorite podcast, from sports to special interests. Did you know that you can listen to all your favorites offline? It's simple. Just head to any podcast page, tap the three little dots next to the episode title, and hit download. Whether it's true crime, lifestyle, health, and science, or anything else, stream your favorite podcasts and listen to them anytime, anywhere.
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
5: It's your boy,
2: just
5: Jay-Z.
2: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
6: कम्युनिकेट नहीं हुआ है कल सीएम साहब ने ब्रेकफास्ट मीटिंग बुलाया है बेंगलोर में उसमें हम हिस्सा लेंगे उसके बाद में क्या सीएम ने सूचित किएंगे क्या हाई कमांड में डिस्कशन हुआ तब बोलने के बाद ये पता चलेंगे ये हुआ है इधर
7: सर क्या माना जा सकते कल जो बैठक होगी कल जो ब्रेकफास्ट मीटिंग है उसमें ये डिसीजन ऑफिशियल हो जाएगा कि अनाउंसमेंट होने
6: ऑफिशियली हो जाएंगे कल तो ऑफिशियली हो जाएंगे तब तक तो हमको वेट करना पड़ेगा
7: सर योर नेम इज आल्सो बीइंग इन टॉक्स फॉर द पीसीसी प्रेसिडेंट
6: पता नहीं मैडम अभी तो चर्चा नहीं है चर्चा तो चल रहा है अभी तक तो वरिष्ठ लोगों ने बुला के चर्चा नहीं किया है अगर करेंगे तो हम बताएंगे क्या करना है कैसा पार्टी का डिसीजन सबका अंतिम हो जाएंगे पार्टी जो निर्णय लेंगे सबको मानना पड़ेगा
8: आवर जनरल सेक्रेटरी एसीसी हु इज इन चार्ज ऑफ कर्नाटक श्री रणदीप सुरजेवाला जी इज कमिंग एंड ही विल वॉट एवर ही सेज यू नो दैट विल ऑल फॉलो बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स द हाई कमांड
9: विपक्षी दल और मुख्य विपक्षी दल विशेषकर कांग्रेस पार्टी उसका करार चीन में है परिवार इटली में है विचार का केंद्र इंग्लैंड में है यूरोप में और दुष्प्रचार का केंद्र अमेरिकी संस्थानों में है और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं मैं पुनः यह कह रहा हूं करार के तार चीन से जुड़े हैं विचारों के तार यूरोप से जुड़े हैं दुष्प्रचार के तार अमेरिका से जुड़े हैं परिवार के तार इटली से जुड़े हैं और वोटरों के तार बांग्लादेश से जुड़े हैं मुझे लगता है अब उनका यह असली चरित्र का चोला उतर गया है और वह पूरा चरित्र जनता के सामने तार तार हो गया है

0: Hot Mics, now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture. Hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
1: मोहब्बत का शरबत थोड़ा थोड़ा आओ भैया आओ भैया बाबा चश्मा लगाएं हर जगह भगवान नजर आए जब भी बिजली जाए मिनी बुलडोजर पंखा चलाएं आए आए आए गर्मी का इलाज पाए पाए पाए दस रुपए निकालो दस रुपए पी लो गन्ने का रस मिलेगी ठंडक नहीं रहोगे बेबस आयो भाई साहब आइसक्रीम ठंडी आइसक्रीम लिट्टी चोखा का फ्लेवर है इस आइसक्रीम में बड़ा फ्लेवर है
2: हम्बा हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा रम्बा भवानीपुर का कुल्फी सबसे ठंडा ठंडा कुल्फी खाइए और गम भूल जाइए
3: वोकल बनिए वोकल गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल गमछा घुमाओ गर्मी

0: मोहब्बत का शरबत थोड़ा थोड़ा। आओ भैया, आओ भैया, बाबा चश्मा लगाए, हर जगह भगवान नजर आए, जब भी बिजली जाए मिनी बुलडोजर पंखा चलाए, आए आए आए गर्मी का इलाज पाए पाए पाए।
1: दस रुपए निकालो, दस रुपए पी लो गन्ने का रस, मिलेगी ठंडक, नहीं रहो।
0: बाबा चश्मा लगाए, हर जगह भगवान नजर आए, जब भी बिजली जाए मिनी बुलडोजर पंखा चलाए, आए आए आए गर्मी का इलाज पाए पाए पाए।
1: दस रुपए निकालो, दस रुपए पी लो गन्ने का रस, मिलेगी ठंडक, नहीं
2: सबसे ठंडा।
3: वोकल बनिए वोकल, गर्मी दूर भगाए गमछा या लोकल, गमछा घुमाओ गर्मी।

0: After the NEET controversy and after the CBSE online evaluation round, questions are being raised over the UPSC prelim examination. Nearly 5.5 lakh aspirants appeared for the exam on the 24th of May. But as soon as the paper ended, social media was flooded with complaints. To understand the outrage, India Today reached Mukherjee Nagar in Delhi, a UPSC coaching hub.
1: बच्चों का कहना यह है कि इस बार का जो प्री का पेपर आया बहुत कठिन आया, लीक से हटकर आया, थका देने वाला आया और खास तौर पर हिंदी भाषी विद्यार्थी और क्षेत्रीय भाषी विद्यार्थियों का कहना है कि भाषा के कारण पेपर उनके लिए बहुत कठिन हुआ।
0: Several aspirants allege that this year's paper strayed sharply from the traditional pattern, with many claiming confusing Hindi translations. Many questions were harder to decode, with mechanical language and poorly framed questions. Candidates say crucial time was lost simply trying to understand what was being asked. The CSAT paper too has triggered complaints. Students say mathematics questions involved lengthy calculations, while comprehension passages were packed with complex wording.
2: जो लेंदीनेस है इस पेपर की, उसमें जो और ऐड करता है वो है वेगनेस। मतलब आप एक एक पन्ने के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और फिर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इसका आंसर एक्चुअली में क्या है, तो वो आपके सारे कॉन्फिडेंस को, सारे प्रिपरेशन को ऊपर से नीचे बदल देता है, जिसमें लक बहुत बड़ा फैक्टर फिर आने लगता है।
0: फॉर लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स, यूपीएससी इज नॉट जस्ट एन एग्जाम, इट इज इयर्स ऑफ सैक्रिफाइस, प्रिपरेशन एंड होप। But this year, many aspirants believe the battle was not just about knowledge, but also about decoding the language of the paper itself. With Anmol Bali, Bureau Report, India Today.